वहां सास ग्रास भूलन हार हां तेरिया बख्शिशा नू तेरिया रहमता नू असी भूल जांदे हां कितनिया तू साडे ते मेरा कीतिया हन जे तेरे उपकारा नू चेते करिए ता जितने शरीर दे रोम हन इतने जन्म भी धार के तेरा शुकराना करिए ता वी कर नहीं सकदे ए निरंकार ए साडे कलजुगी जीवां दा सुभाव ही है कि संग सहाई सो आवे न चीत जो बहराई तां सो प्रीत जिड़ा हर वेले हिरदे विच वस रहा है जिदी कृपा नाल वेख सकदे हां सुन सकदे हां बोल सकदे हां चल सकदे हां ओ सानू विसर गया जेड़े दुनिया दे पदार्थ एक दिन दुख रूप हो जाने हन एक दिन पराए हो जाने हन उनां नाल असी प्रीति पा ली है जिस धन दौलत पदार्थां दे नाल प्रीति पाई फिर हजूर कहंदे न त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोड़ी कितने दुखां करके मनुख जोड़दा है कण कण करके कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ ते नाल केड़ी वस्तु गई नाल ता भाई परमेश्वर दा नाम गया ना क्योंकि हजूर दी बाणी कह रही है कि एक छिन दे विच ए सब कुछ पराया हो जांदा है दुनिया दे पदार्थां नू माया नू चंचल करके दस्या त्याग चलती महा चंचल जदों प्राण पंखेरू उड़दे हन तां एक छिन विच सब कुछ पराया हो जांदा है माया पदार्थ धन दौलत सब त्याग जांदे हन हे निरंकार हे सच्चे पातशाह साडे कलजुगी जीवां दा सुभाव ही है कि संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई तां सो प्रीत इस लई कृपा कर मेहर कर आ धन गुरु अमरदास पातशाह जी साडे संसारी जीवां लई कर रहे हन अरदास जिवें गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जगत जलंदे नूं ठारन लई कीती अरदास हे निरंकार ठंड वरताओ संसार ते वेखो जीव किवें दुखी हन ते फिर उना दुखी जीवां नूं गुरु नानक ने जिवें नाम दा छट्टा मार के सुख बख्शिया गुरु अमरदास पातशाह भी यही अरदास कर रहे हन और सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन क्योंकि मास्टर पहला आप पहाड़े बोलदा है फिर पिछे बच्चे बोलदे हन गुरु ने सानू अरदास करन दी जाच दसी है वही करो अरदास उस अकाल पुरख वाहे गुरु अगे कि जित द्वारे उभरे तिते लेहो उभा सारे दरगाह के तेरी दरगाह पूजे हां ते करो कृपा महाराज हुण अपने चरणा नाल जोड़ लो असी सास ग्रास तेरी भगती करके तेरा सिमरन करके अपना लोक भी ते अपना परलोक भी सवार सकीए कर कृपा जगत जलंदा रख लै।

प्रभ कह दा आन ना भी आ तेरी शमशर, तेरे बिना होर कोई सुझदा नहीं, क्योंकि होर किने बा फड़नी है। जिदे नाल प्रीतां पाईयां ए प्रीतां कुड़ियां हो गईयां, ए निरंकार तेरे चरणा दी प्रीत सच्ची है, सारे दरगाह के तेरी चरणा विच पुजे हां। इस लई नानक अवर न सुजई हर बिन बख्शन हार, तू बख्शिंद है, तू बख्शिशां दा सागर है, जे मेरे पापां दे दो चार बेड़े डुब भी गए सागर नूं की फर्क पवेगा।

ज्ञान जन करके जीती रात असुर सारे ते प्रियात नानक नावे बाज सुनात राग गुंजरी महला चौपा हरते जन सतगुर सतपुखा बिना करो गुरपास हम कीरे चरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रयास मेरे नीच गुरुदेव मोका राम नाम प्रयास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाय हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड़ पहाड़े जन हर हर सरदार प्यास हर हर नाम मिले तृप्तस मिल संगत गुण प्रयास जन हर हर हर रस नाम न पाया हे भावहीन जन पास जो सतगुर शरण

पुरुष एकता ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन अगमान मातार सत्य हैं सत्य हैं खुद जी हर सच्चे सर्जनहार सब जी तुम्हारे जी उनकिया का दातार हर त्यावा।

पारी कोदगन अवर न जा रूपार ब्रह्म बेअंत बेअंती देवे क्या भया गोखा जो सेवन जो सेवन तुम ज्ञान नानक तन कुर्बान।

स्वयपेति तुमरा लहन गाय पसार एक दुसया प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप अनंत पयो राव कही पुप्पा अंडज जेरज सेतर की उत पोखान बहुर रखी कहूँ फूल राजा हो बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा सगरी से दखाए अचम भव आद जुगाद सुंत सुन भव अब क्या मेरी तुम करो सिख उबार आशिक संघरो दुष्ट जिते उद्वत उत्पत्त सकल मलेश करो रंगता ये अस्त हो गया तब शरण परे जिनके दुष्ट दुष्ट हो मरे पुरख जवन पर परे तिहारे जिनके तुम संकट सवतारे जो कल को एक बार त्य है ताकि काल नित में है रचा होए ताए संकला

अर्नाडों तुम मन मेरे तू सब विसारण अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारण सबना गल्ला समरत स्वामी सोचो मनो विसारे अनंत मन मेरे सदर और नाले साचे साहेबा ध्याना ही करते है भक्तों तेरा सब किश जिस देश हो पावे सदा सत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शंत मेरे कह नान सचे साहेब क्या नाही करते रह सचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुकरा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा प्रवान किता गुरु बिटो जसिया ए वड़े आई कह नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचावद धरस भागै धरस भागै शब्द वाजे करा जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल अंकित मारिया घोर कर्म पा तुम जिनको से नाम हर कै लागे ऐ नानक तैं सुभ होआ तित घर अनहद वाजे मुंदावनी महला पंजवां आग विच तैन वस्तु पइयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर पियो जिसका सब साधारो एको खैवे जेको पुछे जिसका होए उधारो ए वस्त जी ने जाई नित नित रख और धारो हम संसार चरण प्रिय सब नान

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

अपने सन्यासी पिता मेहता कालू ऐ बालके तुहाडा भी दूसरा जन्म होवेगा, हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर तुहाडे घर ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इन्हां दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान होए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक कहो जिहा सुपना है, ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी।

उठ के खड़े हुए, अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे कर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, तन गुरु नानक साहब दे कमरे वाल चल पे, ते की देखते हैं तन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे में दीवा नहीं बलता पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्ता लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषों के नाल भरे है। मंगला चरण के गीत

हाथ जोड़ के धन गुरु नानक साहब लम्या पै के डंडौत करते हैं ते नाले कहंदे ने ऐ दाता तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा है ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे में बाहर आए और अपनी घरवाली

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाले ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

जेड़े बच्चे अपने माता पिता की परवाह नहीं करते, इस सिख्या उन्होंने वास्ते कि देखो वो गुरु नानक साहब जिन्हां नूं दुनिया नमस्कारा करती है वो धन गुरु नानक साहब अपने पिता नूं मत्था टेकदे ने ते सानूं उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर वो मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद नूं जन्म देंदे ने, औलाद माता पिता नूं जन्म नहीं दे सकती, ये मापिया का वड्डा गुण।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद ओ ही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते बुराइयां करते हैं तो फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

इस बुढ़ी मां दा सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरत्या। दुखां ने इस माता नूं घेरा आण पाया, पाणा इंज वरत्या के माता दा पुत्र गुजर गया। ए मां ताहां मां

आखण लगा मेरा बिरद बापू जो इस घर का मालिक सी वो गुजर गया। इन्हां चावलों वल देख के मैनू

रोना मैनू चाहिदा है। जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया, मालक रहमत करे, मैनू भी मेरा पति

बेसमझ। एक राजे दी लड़की सी, परमात्मा ने उदे लेख ही ऐसे लिखे, उदे संजोगां दे विच कोई लड़का नहीं सी, उदे कर्म ही ऐसे सन कि उदी जिंदगी विच कदे घर वस ही नहीं सी सकदा। ते साथ संगत कितनी नियामत है, कईयां नूं वाहिगुरु घर वसण दा चांस दिंदा है, ओ वाहिगुरु दी दित्ती होई दात नूं घर उजाड़ के रख दिंदे ने। कहिंदे कि ओ जिहड़ी बच्ची सी जदों जवान होई, वर लायक होई, राजे ने उसी मंगनी कीती, बड़े राजिया नूं बुलाया, राजकुमार आए, उस बच्ची दा स्वयंवर रचिया गया। ते सात संगत उदे कर्मां च ए लिखिया सी कि जेड़े भी लड़के नाल उदी मंगनी होएगी ओ लड़का संसार तो चला जाएगा। मंगनी होई, जदों शादी दा दिन तय किया गया, बरात तो कुछ दिन पहला वो बच्चा दुनिया तो चला गया, बड़ा दुख होया, राजे दे घर भी बड़ा दुख मनाया गया, इस लड़की ने भी बड़ा दुख मनाया। चलो साल बीतिया, एक बार फिर स्वयंवर हो गया, फिर उसे तरह बरात तो चार दिन पहला लड़का फिर दुनिया तो चला गया। इसे तरह राजे ने 12-13 बार लड़की दा वर ढूंढिया, ते जेड़ा भी वर ढूंढदा सी ओही ओ दुनिया तो चला जांदा सी। आखिर विच अखां विच हंजू भर के अपने पिता कोल आ गई, हाथ जोड़ के पिता नूं कहण लगी, पिता जी तुहाडा ते कोई कसूर नहीं, जे अकाल पुरख ने मेरी झोली च ही सुहाग नहीं पाया तां तुसी कित्थों पाओगे। वैराग दे विच आके इन्हें अपने पिता दी झोली दे विच बैठी होई पिता दे वस्त्र कपड़े भेज दिते। बड़ा वैराग आ रहा सी ते कह रही सी, हे परमात्मा, जे तू मेरा घर ही नहीं सी वसाना ते तू मैनू इतना नेक क्यों बना दिता। राजे दे घर जन्म दे के कहंदे ने कि राजे दे घर मोतियां दा काल नहीं हुंदा, पर कहंदे ने कि जिस नूं परमात्मा ना देवे भावें बादशाह दे घर जन्म लै लवे। हजूर कहंदे ने बाली रोवै, ओ बाली, ओ लड़की, ओ बड़ी दुखी होके रो रही सी, पर जदों उसने देखिया कि सारा संसार ही दुखी है, एक महापुरुष ने आके इस बच्ची नूं दिलासा दिता। वो कहन लगे, बेटा
ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਕਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੋਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ।

जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो, जे गुरु रोकदा है किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा है। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने करों तैयारी की थी, करों तुर पिया। अजामल शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा, कलावती नाम दे इक वेसवा हार शिंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देख लिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंची है, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचों निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा वो हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोज दा काम बन गया वेसवावां दे बाजार विचों।

दुर्मत दहया, गुरु तो बेमुख हो गया, गुरु दा कहना नहीं मनिया ते पाप कमान लग पे है। गुरु नु पता लग गया, गुरु ने समझाया अजामल, वेसवा दे कोल जाना बंद कर दे, पढ़ाई कर, अपना मन पढ़ाई विच लगा। अजामल ना मनिया, अजामल दे पिता नु पता लग गया।

जंगल चला गया, दूसरे पास से कलावती वेसवा जेड़ी अजामल दी घरवाली बन चुकी, घर दे बाहर खलोती है। कुछ महात्मा महापुरुष उस पास से आ निकले। कलावती ने उन साधुआं नू संता नू अपने घर बिठा लिया। आप बाहर खड़ी होके अजामल दी उड़ीक करन लगी। थोड़ी देर बाद अजामल आया, चादर मोड़े ते मारी। कुछ पंछी ने चादर विच चादर खून दे नाल भरी हुई। कलावती कहन लगी अजामल, ए जड़ी पापां दी पंड लियांदी है इहनू बाहर रख दे। घर संत आए ने, सारी उम्र पाप कमाए ने, किसे दा कहना नहीं मन्या। कोई चंगे कर्म कीते ने किसे वेले दे कि अज महापुरश साडे घर आए ने। आओ संतां दी शरण पै चलीए, हो सकदा है

जमदूत वेख पुत्र नारायण बोले शया। जमदूतां नूं देख के डर गया, पुत्र भुल गया, ते उची सारी कहिंदा है नारायण बचा। ते नारायण परमेश्वर दा नाम है।

0: देख है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

रियासत दे विच राय कोट दा मुसलमान चौधरी राय कला मिलिया अते गुरां दे नाल लम्मे जटपुरे जा ठहरिया बेनती कीती गुरु जी आप हिंदू मुसलमान दे सांझे पीरो दास नूं सेवा बख्शो राय कले दा प्यार तकदिया गुरदेव ने कहा चौधरी किसे समझदार ते भरोसे योग आदमी नूं सरहंद भेज के साडे पुत्रां दी खबर मंगवा दे उसे वेले राय कले ने नूरे माही नूं सरहंद वल तोर दिता सरहंद जाके जो कुछ माही ने सुनिया ओदी छाती पाट गई ओनी पैरी वापस मुड़ पिया आके रो रो के दसदा हाल नूरा सूरज चन्न बदलां विच आ गया है टोडर मल सरहंद दे रहण वाला सेवा बहु बडमुली कमा गया है संस्कार लई मुल जमीन लेके शाहूकारे दी रीत निभा गया है महेंद्र सिंह नवाब जो कोटले दा शेर खान भी लाण तो पा गया है गुरु साहब दे चरणां ते ढाई के नूरा इउं हाल दा।